ये जरूर नहीं हो सकती जितना समझा जाता है, क्योंकि हालिया सालों में तेजी से फैलने वाला ये तस्वुर कि जितनी ज्यादा प्रोटीन उतनी ही बेहतर सेहत, जिस्म की हकीकी जरूरियात पर हावी होना शुरू हो गया है। तो जरूरत से ज्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल सेहत को कैसे मुतासर करता है, जिस्म की रोजमर्रा की प्रोटीन की जरूरत कितनी है? टीआरटी न्यूज ने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में पब्लिक न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट के सरबरा प्रोफेसर डॉक्टर एलवान यिलमाज अक्यूज के साथ इस मौजू पर तफसीली गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं कि हमारे माहिर ने क्या बताया है। पहले इस बात को वाजे कर लें, प्रोटीन वाकई इंतहाई अहम है। प्रोफेसर डॉक्टर अक्यूज की तारीफ के मुताबिक प्रोटीन जिस्म के बुनियादी ढांचे के ब्लॉक्स हैं। ये नशोनुमा, तरक्की, बाफ्तों की मरम्मत और बनावट और मुदाफियती निज़ाम के लिए एक नागुजीर और लाजमी गजाई जुज है। यही वजह है कि रोजाना ली जाने वाली प्रोटीन की मकदार बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि प्रोटीन की कमी अपने साथ सेहत के मसाइल लेकर आती है। तहम इसके बिल्कुल बरअक्स प्रोटीन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। प्रोफेसर डॉक्टर अक्यूज इस मौके पर एक अहम नुक्ते की तरफ इशारा करती हैं। प्रोटीन की मकदार के साथ साथ ये भी अहम है कि आप उसे हासिल कहाँ से कर रहे हैं। रोजमर्रा की प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए हमारे लिए हर खाने में इसे शामिल करना जरूरी है, लेकिन हम कौन सा जरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, हैवानी प्रोटीन या नबाताती प्रोटीन? सिर्फ एक ही किस्म के प्रोटीन के जराए का इस्तेमाल फायदे के बजाय कई मसाइल का सबब बनता है। प्रोफेसर डॉक्टर अक्यूज मुमकिन नुकसानात की वजाहत करते हुए कहती हैं, अगर आप हर खाने में रोजाना सिर्फ हैवानी प्रोटीन के जराए इस्तेमाल कर रहे हैं तो अमराज कल्ब समेत मेदे और बड़ी आंत के कैंसर जैसे खतरात बढ़ जाएंगे। इसके साथ ही चूंकि आपकी गजा में फाइबर की मकदार कम हो जाएगी, इससे आंतों के मसाइल पैदा होंगे और आपका मुदाफियती निज़ाम मनफी तौर पर मुतासर होगा। प्रोटीन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल गुर्दों पर भी मनफी असर डालता है। प्रोफेसर डॉक्टर अक्यूज अपनी बात जारी रखते हुए कहती हैं, अगर आपको गुर्दे की कोई ऐसी बीमारी है जिसका आपको इल्म है या इल्म नहीं है और आप बहुत ज्यादा मकदार में प्रोटीन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे आपके गुर्दों पर बोझ बढ़ जाएगा और यह सूरत हाल को मजीद खराब कर देगा। इसी तरह प्रोटीन जिगर में मेटाबोलाइज होती है। ये चीज आपके जिगर को भी हद से ज्यादा थका देने का बाइस बनेगी और अगर आप पहले से कोई अंदरूनी बीमारी आप में मौजूद है तो ये इसके खतरे को मजीद बढ़ा देगी। तो फिर हैवानी प्रोटीन बेहतर है या नबाती? प्रोफेसर डॉक्टर अक्यूज का जवाब वाज़ेह है, हमें हैवानी प्रोटीन की तरह नबाती प्रोटीन के जराए को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अपनी रोजमर्रा की गिज़ा में हमें हैवानी और नबाती दोनों किस्म के प्रोटीन्स को जगह देनी चाहिए। नबाती प्रोटीन की हयातियाती इफादियत को बढ़ाने के लिए हमें इसे अनाज के साथ मिलकर इस्तेमाल करना चाहिए। ये अमीनो एसिड के पैटर्न को मुतवाजन बना देगा और जिस्म में उसकी इफादियत बढ़ जाएगी। अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की तरफ, रोजाना कितनी प्रोटीन काफी है? प्रोफेसर डॉक्टर अक्यूज आदाद शुमार बताती हैं, जब किसी शख्स की उम्र, अद, वजन और जिस्मानी हालत को मद्देनजर रखा जाए तो हम कह सकते हैं कि सेहतमंद बालिग अफराद के लिए रोजाना फी किलोग्राम वजन के हिसाब से 1.2 या 1.6 ग्राम प्रोटीन का इस्तेमाल काफी है। बच्चों के लिए मकदार थोड़ी मुख्तलिफ होती है। नशोनुमा पाने वाले छोटे बच्चों के लिए हम इसे फी किलोग्राम वजन के हिसाब से 2 से 2.5 ग्राम तक रख सकते हैं। ताहम किसी बीमारी की सूरत में या एथलीट्स के लिए ये सूरत हाल बदल जाती है और इसकी मकदार में इजाफा हो सकता है। खास तौर पर डाइटिंग करने वाले लोग पट्टों को कमजोर होने से बचाने के लिए हर खाने में प्रोटीन को लाजमी शामिल करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अक्यूज इस बारे में कहती हैं, प्रोटीन को दिन भर के खानों में तकसीम करना अहम है, लेकिन ये कोई लाजमी उसूल नहीं है कि हर खाने में हैवानी प्रोटीन का होना ही जरूरी है। हमारे नबाती प्रोटीन के जराए जैसे चने, सफ़ेद लोबिया, हरी मसूर की दाल या अब प्रोटीन के जराए में शुमार होने वाले गिरीदार मेवे जैसे हेज़लनट, मूंगफली, अखरोट और बादाम भी हमें प्रोटीन फराहम करते हैं। जब हम उन्हें अपनी गिज़ा में शामिल करते हैं तो हम प्रोटीन की रोज़मर्रा की तकसीम को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ प्रोटीन हासिल करने की खातिर हर वक्त अंडे, सुर्ख गोश्त, मुर्गी या मछली खा रहे हैं तो यह सेहत के लिए ज़्यादा खतरात पैदा करेगा।
اور پروٹین والے دہی اور مشروبات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر اکیوز اس پر تائید بھی کرتی ہیں اور انتباہ بھی دیتی ہیں۔ جب تک ہم پروٹین کی روزمرہ کی مقررہ مقدار سے تجاوز نہ کریں، ہم پروٹین والے دہی کا استعمال کر سکتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو ورزش کرتے ہیں۔ لیکن اپنی غذا میں دہی کی پوری ضرورت کو صرف پروٹین والے دہی سے پورا کرنا غلط ہوگا۔ ہاں، یہ جسم میں پٹھوں کی بناوٹ میں مدد کرتا ہے اور پٹھوں کے نقصان کو روکنے کا اثر بھی دکھاتا ہے، لیکن اگر آپ پہلے ہی غذا سے کافی پروٹین حاصل کر رہے ہیں تو اس کی کمی کو اضافی پروٹین والے دہی یا پروٹین والے مشروبات سے پورا نہ کریں۔ پروٹین پاؤڈر کے استعمال میں بھی احتیاط برتیں۔ اگر آپ غذا کے ذریعے مناسب مقدار میں پروٹین لے رہے ہیں تو پروٹین پاؤڈر سے اس کی مدد کرنا لازمی نہیں ہے۔ آخر میں آئیے ان گروہوں کا ذکر کریں جنہیں خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے۔ پروفیسر ڈاکٹر اکیوت درجہ ذیل انتباہات جاری کرتی ہیں۔ جگر کے مریضوں میں پروٹین کا میٹابولزم خراب ہو سکتا ہے۔ پروٹین کی زیادتی خاص طور پر آخری مراحل میں امونیا کے جمع ہونے، ہیپاٹک انسیفلیوپیتھی یعنی جگر کی خرابی کی وجہ سے دماغی اثرات اور ہوش و حواس میں تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس طرح گٹھیا کے مریضوں میں خاص طور پر حیوانی پروٹین، سرخ گوشت اور کلیجی اور مغز کا استعمال یورک ایسڈ کو بڑھا کر درد کے جھٹکوں کو تیز کر سکتا ہے۔ اگرچہ بزرگوں کے لیے پروٹین اہم ہے، لیکن انہیں اپنے گردوں کے افعال اور پانی کے استعمال کے حساب سے اس کے ضرورت سے زیادہ استعمال سے بچنا چاہیے۔ نتیجے کے طور پر پیغام واضح ہے، پروٹین صحت کے لیے ناگزیر ہے، لیکن ہر اچھی چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ اپنے پروٹین کے ذرائع میں تنوع لائیں، اس کی مقدار کو متوازن رکھیں اور اپنے جسم کی حقیقی ضرورت پر کان دھریں۔ پوڈ کاسٹ سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہمارے کسی دوسرے پوڈ کاسٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔